रहा हूँ, सब मुझे सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं सच बना रहा हूँ, वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे मीन बॉडी पसंद है, मैं हिंदी खाने चबा रहा हूँ, सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी जाके

कारणले के मेसेज तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव तेरे को भी सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं कसम बना रहा हूँ, वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, क्योंकि दिन बहुत पसंद है, मैं जल्दी खाने चबा रहा हूँ, तुमने में आया है, तू लंदन में रहती है, अब भी क्या अब भी

0: रेडियो हिमशिखर 103.3 MHz।
1: यस खबर परिक्रमाका साथमा इलेक्ट्रिक स्कूटर तथा इलेक्ट्रिक साइकल सुपथ मूल्यमा पाइने स्वरूप डमक इन्टरप्राइजेस गोर्खा डिपार्टमेन्ट अगाडि, फोन नम्बर 98160913।
2: नमस्कार।

ताकि धुमधाम राइट सपन नया इबी मेरो टियागो इबी सँग लाइफ छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun. Go.